0: चलो भैया।
1: नील वसल कपड़े पैरे तुर्क पठानी अमल किया चार विधो सचार पढ़े गुणे चार विचार
0: पाओ भगत कर नीत सदाए तो नानक मोखंतर पाए पड़ी।

अभ्यास कर दस कित फल पके फल बक पके कम नया विपत मिठ निवि नानक गुण चंगाइया तत् सब कुन वे आपको पर कुन न कोई।

जे जाना सहनंढड़ा थोड़ा मान करी फरीदा रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भुख जिन्ना खाधी चोपड़ी घने सहणगे दुख दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना होई तू करता करना मैं नाहीं जाहौं करी ना होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखया बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखया बेसुमार अथा अगणत अतोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै जुगो जुग अटल दीन अरदुनी दे मालक सर्व संजीवालता दे उपदेशक गुरुआं के गुरु पीरां दे पीर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन अस्थाना उपर जुड़मिल बैठे गुरु प्यार वाले सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा वरताई है अपने पावन चरणा कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश कीता है। आओ गुरु प्यार वाले हो जो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां चल रही ने इन्हां चल रही लड़ीवार गुरबाणी विचारां जो रोज़ाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तो सरवण कर दियां हो उन्हां विचारां दे नाल आपां सांझ पाईए विचारां आरंभण तों पहलां सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखन सतगुरु आप रसना उत्ते वरत के पावन शब्द गुरबाणी दी विचार सतगुरु आप करवा लैन और आप सरबत संगत असीस बख्शो कोई रसना वांझी ना रहे दोवें हथ जोड़ अपनिया मन बिरतियां एकागर करदे हां लवाओ गुरु चरणा विच हाजरी अदब सहित सरबत संगत मिल करके उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी एक बार फिर करो रसनावा पवित्र और मिलके आखो जी सतनाम श्री

0: सच दीता राम।
1: अगला पदा फिर गुरु साहब ने उचारिया, सुन सज्जन मैंडड़े जी, सुन सज्जन जी मैंडड़े मीता। हे मेरे मित्र सुन, सज्जन जी मैंडड़े का अर्थ भी मेरे, मीता मित्र सज्जन का अर्थ भी मित्र। सुन सुन हे भाई, आवाज मार के, गुर मंत्र शब्द सच दीता राम। गुरु ने सच्चा शब्द मंत्र रूप विच मैनू बख्श दिता है, उपदेश रूप विच बख्शता ज्ञान। हुण इत्थे मंत्र दा अर्थ उपदेश ज्ञान, किन्ने बख्शिया? गुरु ने। गुर मंत्र शब्द ते दिता केड़ा? सच। सच रूपी उपदेश गुरु ने मैनू बख्श दिता है, जायो कह लो गुरु ने सच दा उपदेश, सच दा ज्ञान, ब्रह्म दा ज्ञान मैनू बख्शे है। उपदेश यही है ना, मंत्र यही है। गुर मंत्र शब्द सच दीता राम, सच रूपी मंत्र, सच रूपी उपदेश मेरे गुरु ने मेरी झोली विच पाया है। हे मेरे मित्र तू सुन, सुन सज्जन मैंडड़े मीता राम। हे मेरे मित्र, हे मेरे सज्जन जी, मैं तुहानू दस रहा, मैनू मेरे गुरु ने त्रुट के सच रूपी उपदेश, सच रूपी ज्ञान मैनू बख्शिया है।

जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रसिया रियायत। देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान प्रोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृत सरजिया दे दर्शन स्नान चौंकियां झंडे वंगे जुग जुग अटल। धर्म का जयकार बोलो जी। सिखांदा मनी वा मत ची मत पत दा राखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरु धामां दे जिन्हां तों खालसा पंथ नूं

जी विखे अमृत वेले दे दीवान सजाए गई सजे हुए दीवाना अंदर श्री आसा दीवार दे शब्द कीर्तन गुरबाणी लड़ीवर कथा विचारा से पौड़िया आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जिया दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटा बंदर प्रवान करनिया यात्रावां सफल करनिया दरों करों गुरु सिखी जीवन नाम बाणी दियां दातां बख्शनिया

लैन जो तेरा नाओ तिन्ना के हाँ सद कुरबान जाओ तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहले राखो।

तेसही को ग्रह सोई प्रभु नानक सो ठाकुर तेसही को तीना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर

सहाय वर श्री भगवती जी की बात साई दसमी प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोविंद न सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइय जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निदावे ताए सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह

सिखी किसान स्वसना निवाही तेना दिक मई दात्या अंतर के खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारे अंदर के बोलो जी। प्रथमे

तेग फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीता, श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोलबाले बोलो जी।

सहे मिल संगत गुण परगास जैना हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मान चितवह उदम जा आहर हर जियो प्रया सैल पत्थर में जंत उपाय ताका रिजक आगे कर धरया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बैंता कोए न किसकी तरया सिर से रिजक समाहे ठाकुर काहे मन पाओ करया ऊडे ऊड़ आवे सै कोसा तिस पाछे बचरे छरया तिन कवण खलावै कवण चुगावै मन में सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब ते आवहे सब ते आवहे तुदजी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ते आव हो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बढ़ाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्मे अंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर ते आवहीं हर ते आवहीं तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुकत बाहे जिनार त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी।
हर निक्के अनेक अनंता, तेरी अनेक तेरी अनेक करें हर पूजा जी। तप तापे हैं जपे हैं बयंता, तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमृत शास्त्र जी। कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी। जो पावें मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी। तुझ जे बड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू नहीं चल करता सोई, तुद आपे भावे सोई वरतै जी। तू आपे करहें सो होई, तुद आपे सृष्टि सब उपाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी। जो सबसे का जानोई, आसा महला चौथा, तू करता सचियार मेंडा साई। जो तो पावे सोई थीसी, जो तू दहें सोई हो पाई रहो। सब तेरी तू सबनी ते आया, जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुग भया, तुदे आप बिछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खे, वियोग मिल बिछोड़िया संजोगी में। जिसना तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिंदु जा अवर ना कोए। तू कर विखे हैं जाने हैं सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरणे भैले निवासा। पाणी पावक तिन्हे किया, पंकजो मोह पग नहीं चले। हम दिखा तहें डूबी अरे, मान एक न चेतस मूढ़ मना। हर विसर तेरे गुण गलिया रहो, ना हूँ जती सती नहीं पड़या। मूरख मुगदा जन्म भया, प्रण नानक तिनकी शरणा। जेहो तू नाही विसरया, आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख देवरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर का तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। संजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहो। जप तप संजम धर्म नाक माया, सेवा साध ना जन्ने आहर राया। कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्ने आहर राया। कहु नानक हम नीच करम्मा,
शरण परे की रख हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई। हमरी करो हाथ देर छा पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबय तुम काबो हो आप हाथ दे मुहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सभे करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए सवेरन को आय संगरिए। पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छा कोई अवर ना थे आऊं जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख मारे तारी है चुन चुन शतर हमारे मारी है। आभाद दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है। हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करी हो रक्षा। राख लियो मोहे राखण हारी साहिब सन सहाय प्यारे। दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतरदस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपधरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जो थियो। जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार हैं तहें हमारा। जमन काल सब जगत बनायो देव दें जक्षण उपजायो। आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी। सेवकन को सेवगण सुख दियो शत्रण को पलमो बद कियो। कटकट गए अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत। चिंटी दे कुंजर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछन्ने कट कट के पड़ पड़ की जन्ने। जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तव देह अपारा। जब या कर्ख कर तुह कब हूँ तुम मैं मिलद देहे धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत नर आलम जानत भेद भेद अर आलम। रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड़े उचारत भेदा जाको भेव ना पावत बेदा। ताको कृपा हणे अनुमानत महामूड कछ भेद ना जानत। महादेव को कह सदा शिव रंकार का चीनत नह पिब। आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा
किह विद सजा प्रथम संसारा, इक्कै रूप अनूपस रूपा, रंक भयो राव कहीं पूपा, अंड जेर से तज कीनी, उत्पज खान बहर रच दीनी, कहो फूल राजा हवै बैठा, कहो सिमट भयो शंकर अकैठा, सगरी सृष्ट दखाए अचंपव, आजुगा स्रूप स्वयंप, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्यो बार आसिक संघरो, दुष्ट जिते उठवाद उतबाता, सकल मलेश करो रणगाता, जे अस्तु जे तब शरणी बरे, तिनके दुष्ट दुख्त हवे मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सवटारे, जो कल को इक बार ते है, ताकि काल निकट नह है, रक्षा होए ताही सब कला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कला, कृपा दृष्ट तन जहे न हरे हो, ताकि ताप तनक मैं हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर मोसव होई, दुष्ट शहाशवाय सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें सवारा, काल फांसती ताहें ओबारा, जिन नारे नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो ओबारी, सरठो मोह हो सहाई, दुष्ट दोखते ले हो बचाई, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो ओबारी, सरठो मोह हो सहाई, दुष्ट दोखते ले हो बचाई, सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ, राम रहीम प्राण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहुपेद कहें, हम एक ना जान्यो,

0: होरा सगल द्वार कौ छड के गए हो तोहारो द्वार वहीं गहे की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार कौ छड के गए हो तोहारो द्वार वहीं गहे की लाज अस गोविंदास तोहा। राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता वाया सह सेती मन वजियां वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइया शब्दो तंगावो हरी केरा मान जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सोना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरा है करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिनो भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन है वसिया जिनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विठो जिस दियाँ एह वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब तित कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख होआ तित घर अनहद बाजी आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनाहद तुरे मंदामणि महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे अधारो जे को खावे जे को पुंचाए तिसका होए उदारो एहि वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरी है सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वे हरेया तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वे हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: ठाकुर तुम पहे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम

बोलो जी वाहे गुरु, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं।

तिसी को ग्रह सोई प्रभु नानक सो ठाकुर तिसही को तीना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

पते परम सन्मान योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों सतगुरु महाराज दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी दा लाहा प्राप्त कीता है। लड़ीवार गुर इतिहासक विचार धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी दे पावन इतिहास दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नू एकागर करदे होए निमाणे जे हो के समरथ सतगुरु जी दे पावन चरणा विच जुड़न दा यतन करिए। सबना दियां हाजरियां गुरु पातशाह जी दे पावन चरणा विच लग जान। आप जी रोजाना इस अस्थान तो श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दे राही कवि संतोख सिंह जी दे द्वारा दशमेश पिता अमृत के दाते सरबंस दानी बादशाह दरवेश शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन इतिहास नूं लड़ीवार सरवण करदे आ रहे हो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आनंदपुर साहिब दे पावन अस्थान ते जिथे गुरमत दा उपदेश दे के निवाजदे हन उथे गुरु महाराज जी दी कृपा दे नाल खंडे दी पहुल तैयार हुंदी है। अनंत प्राणी आके सिंह और सिंघणियां सजदे ने। अस्त्र और शस्त्र विद्या सतगुरु महाराज जी दे पासों प्राप्त हुंदी है। भाव बाणी दे नाल भी जुड़ रहे ने और बाणी दे नाल भी इतिहास दे विच आप जी पिछले दिनां तों सरवण करदे आ रहे हो। भाई साहब भाई राम कोयर जी बाबा बुढ़ा साहब जी दी अंश वंश विचों ने जिन्हां दे अंदर सहज है आत्मक अडोलता है दुख सुख तो नियारे हन जिन्हां ने आसा और मनसा दा त्याग कीता हुआ है। तुरियां अवस्था दे मालक ने तीन गुणा तो उपर उठ जान वाली अवस्था जिन्हां दे दीदार माता गुजर कौर जी ने कीते भी ने और अपने हथी सेवा करके लंगर प्रसाद भी छकाया है। गुरु महाराज जी दे नाल बचन बिलास होए कलयुग दी गल चली जिदे विच बुरियाइयां ने विकार ने पाप है और महाराज जी ने साडे ते किन्नी वड्डी किरपा कीती है सानू कलयुग दे विच भी सतयुग वर्गा समा बख्शिया है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए तियाना जे असी सतसंग कर रहे हैं गुरबाणी दे नाल जुड़ रहे हाँ ध्यान करके ते ये जड़ा बुरियाइयां दा समा है इहदा प्रभाव साडे मना उते नहीं पै सकदा। जिहड़े मनमुख ने उहनां उते इस कलयुग दा पूरा जोर है पूरा प्रभाव है क्योंकि ये माया रूपी कलयुग है। महाराज जी कहिंदे मनमुख खादे गुरमुख उभरे उभरे मतलब बच गए
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿਕਾਰ, ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਕਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਖਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੇ ਗੁਰਸਾਂਗ ਵਰਤਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਰਮਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਂਗ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਡੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਚਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਘੁਮਿਆਰ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਣਕਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਹਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਠਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਂਗ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ

ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप भी जुड़िए होरां नूं भी जोड़िए, बाणी बाणी दे धारनी बणिए, महाराज तुहाडे सारियां दियां हाजरियां लिखे दे विच लाउण, अज दियां विचारां करदियां बेअंत गलतियां भुल्लां होईयां सतगुरु बख्श देण, अगे तो समत देण। धन धन गुरु रामदास पातशाह जी दे दर तों निवाजे होए गुरु घर दे कीर्तनियां पासों बड़े प्यार सत्कार दे नाल गुरबाणी दा लाहा प्राप्त करो। वाहे

जय कर कीर्ता किए करते का हुए बिचारो तित कर गावो सोहेला सिवरे व सृजन हारो तुम गावो मेरे निरपो का सोहेला हो वारी यित सोहेला सदा सुख होय रहो नित नित जेड़े संभालेन देखेगा देवन हार त्रिदा ने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार संबद साहा लिखिया मेल कर पावो तेल देव सजन आसी सड़िया जो होवै साहिब समेल कर करे ओ पहुंचा सदड़े नित पवन सदनारा सिमरिय नानक से देवन राग आसा महला पहला शे घर शे गुर शे उपदेश गुर गुरे को वे सनेक बाबा जय कर कर ते किए तो होए सो कर राख वडाई तोय रहो विश्वे चसिया घड़िया पैरा थिती वारी माँ हुआ सूर्य कोरोत अनेक नानक करते के ते वेस राग तना श्री महला पहला गगन में थाल रव चंद दीप को बने तार का मंडल जनक मोती धूप मल्याण लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहत्ता शब्द वा जंत पहरी रहो सहस तब नैन नान नैन तोय को सहस मूर्त नना एक तोई सहस पद बिमलन एक पद गंद बिन सहस तब गंद एव चलत मोई सब मैं जोत जोत है सोए तिसदे चानन सब मैं चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत सपावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लो बित मनो आनंद नो मोए आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारा कोई जाते त्रिनाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो भरिया मिल साधु खंडल खंडाए पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन अरले मंडल मंडाए कर साधु अंजली पनवडाए का डंडौत पनवडाए राव साग तर साधना जानिया तने अंतरों में कंडाए जो जो चले चुबै दुख पावे जमकाल सह से डंडाए हर जनार नाम समाणी दुख जन्म मरण पव खंडाए अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सौ खान ब्रह्मंडाए हम

वाहे गुरु जी की फतेह। सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रहयो, ताते अंगद लहना प्रगट तास चरन है लिव रहयो। तित कुल गुर अमरदास आसा निवास, तासुन कवन वखानो जो गुण अलख अगम तिन्हें गुण अंत ना जानो। बोहिथो बिधाते निर्मयो सब संगत कुल उदरण।

लातार जग मह परवर्यो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जह कह तह परपूर शब्द दीपक दीपायो जह सिखै

जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखे शरण पर रहते उबर है छोड़ जम पुर की लिखे भगत।

दुख दरिद्र पर हर परे, चित चित वो अरदास कहूं पर कह बिना सकूं, सर्ब चिंत तुझ पास साध संगत हो तको, तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा, जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम।

0: पुरख तिव रहो।
1: पिखे के गुर ज्ञान अर्त्यान तत स्यों तत मिलावे, सच सच जानिए इक चित लिव लावे। काम क्रोध वस करे पवन उडंत न तावे, निरंकार कै वसै देश हुकम बुझ विचार पावे। कल माहे रूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो, गुर मिलियो सोए पिखा कहे सहज रंग दर्शन दियो। रहो संत हो टोल साध बो तेरे डिठे, सन्यासी तपस्या मुखो ए पंडित मिठे। बरस एक हो फिरियो किने न परच्यो लायो। कहत्या कहती सुनी रहत को खुशी न आयो। हर नाम छोड़ दूजै लगे तिनके गुण हो, हर नाम छोड़ तिनके लगे, हर नाम छोड़ तिन दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहो। गुर दई मिलायो पिखिया जीव तू रखे तिव रहूं। पहर समाद सनाहो ज्ञान है आसन चढ़ियो, त्रम तनख कर गयो भगत सीले सर लड़ियो। पै निरपो हर अटल मन शब्द गुर ने जा गड़ियो। काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिखंडियो। पलो पोहाल तेजो तना निरपत नाथ नानक बार, गुर अमरदास सच साल पान तैं दल जितो इव जुद्ध कर। कन हर बूंद बसो रो मावल कुसम बसंत गणंत न आवे। राव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे। रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावे।

साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाइए, गुर बिन मुक्त ना होए, गुर नानक निकट बसै बनवारी, तिन लहणा थाप जोत जग तारी, लहणा पंथ धर्म का किया, अमरदास पल्ले को दिया, तिन श्री रामदास सो

आखन चहु जुग गुर सेवा कर फल लहियं बंदे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं पर तख देहे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परनं।

जेहे अमृत बचन बाणी साधु जन जपै कर बिचित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक

गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन तिसना पुख ना उतरे अंदन जलत फिरन।

फिर सलाही अपना गुर के शब्द विचार, मिल प्रीतम सुख पाया शोभावंती ना।

संता संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार, सच सलाही सच मन अंदर सचे सचियार। गुरु

सतगुरु न मिले से फेरा सच्चे शब्द लगन सच मिले से न विसुड़ है दस सच्चे दिशन।

ब्राह्मण चाहो सिखी सिख्या गुर विचार नदरी करम लंघाए पार ओलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत अनंत लाटू माधाणिया नगा पंखी पौंदे लैना सहा सोए चाड़ पवाए जन नानक पौंद्या गणित न अंत बंधन बंद पवाए सोए पया कीर्तन चै सब कोए नच नच हसे चले सिर उड़ना जाई सदना होए नचन कु